0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খণ্টিৰ পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Nina Rakhel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said, "This visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times." He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो

बाला तंदाना ये सोला साला तंदाना है तेरे ख्याला तंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या

मैं किधर को जाता ही दंडाना, क्यों पास न आता ही दंडाना, जा मार ये बाता दंडाना, दिल तोड़ ये घाता दंडाना। तो मैं किधर को जाता ही दंडाना, क्यों पास न आता ही दंडाना, जा मार ये बाता दंडाना, दिल तोड़ ये घाता।

0: ताली ताक झुमी ताक ताली ताक झुमी ताक झाला आमचं ताक झुगी ताक ताजी घेणं ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारिता झग तारिता झन झाले गोगू दारी दाबू दारी गेटे ताक झम तारिता झग तारिता झन झाले गोगू दारी दाबू दारी गेटे झम तारी झग दारी झग नाक ताक ताजन ताजन ताजन ताज झम तारी झग तारी झाले झाले गोगू ताजन ताजम ताजन ताक ताक झंग करुडम कडे झग करुडम ताक झग करुडम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी जाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

दीवान गरीब है तंदाना, सूरज अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना। हमें माना गरीब है चंदाना, सूरज से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे खरीब है।

0: हटूंगा वही इलाकों रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: লতা মঙ্গেশকাৰৰ কণ্ঠৰ এটি গীত শুনাইছো আৰজু ছবিৰ পৰা।

এবার শুনক সমঝোতা ছবির এটি গীত মাহমুদ রফি আর মুকেশর কণ্ঠত।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें

0: 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना

0: होगा।
1: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
2: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, पिजिशकियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
5: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature,

0: 10 মিনিটৰ পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपए और डीजल 95.20 रूपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

सैनिक भाइयों, मैं पूनम बरुआ आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में। हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम तराना।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतमाला। 1:40 पर कार्यक्रम होगा वतन के तराने।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। प्रस्तुत है पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए जब वे मैथ फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए तेजस फिल्म से हरिहरन और शाश्वत सचदेव की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में, लव आजकल फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत मैं हूं ना फिल्म से। आवाजें हैं अनु मलिक, के श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान की।

89.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बांसुरी फिल्म से ये गीत अंगराग पापन महंतो की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं अनुपम बनर्जी ने और संगीत से सजाया है देव ज्योति मिश्रा ने।

हमारे अगले कार्यक्रम तराना की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल मंगलवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर हाजिर होंगे एक ही फिल्म के गीत। 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फूले बिसरे गीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम पेश कर रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए बातें पुरानी फिल्म से रमन महादेवन की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का दूसरा गीत सुनिए, सोहम नेक की आवाज में आओ चले फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए परछाइयां फिल्म से नुसरत फतेह अली खान की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में, दिल का हाल फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए चलते चलते फिल्म से जुबिन गार्ग की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए सुखविंदर सिंह की आवाज में, नशा ही नशा फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर। पेश है कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए बॉम्बे का बाबू फिल्म से मुकेश की आवाज में।

0: सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। अभी आपने सुना बॉम्बे का बाबू फिल्म से मुकेश और साथियों की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत। अब सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत, आओ मिलो सजना फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में शराबी फिल्म से।

0: सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए दाग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
1: आज क्या है

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए एक फूल दो माली फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम में अंतिम गीत सुनिए आशा भोसले और परवीन सुल्ताना की आवाज में परवाना फिल्म से।

गीत के साथ गीतमाला कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों के लिए भी, सैनिक भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से, मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर।

फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब पेश है कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए, काश आप हमारे होते, फिल्म से सोनू निगम की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्या कुमार की आवाजों में सम बहादुर फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, कर्मा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम में अंतिम गीत सुनिए, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से सोनू निगम और मनमोहन वारिस की आवाजों में।

0: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली के एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंजनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के प्रसारण में।

चा कोइराला फिल्म का निर्देशन किया था मंसूर खान ने। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है सपनों की, रिश्तों की, समझौते की और उस अकेलेपन की जो कभी-कभी अपनों के बीच भी महसूस होती है।

अकेले हम अकेले तुम, यह फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे आमिर खान और मनीष।

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म की कहानी शुरू होती है रोहित और किरण से। रोहित एक संघर्षशील गायक है जिसके पास बड़े सपने हैं लेकिन जिंदगी में स्थिरता नहीं। वही किरण एक महत्वाकांक्षी लड़की है जो अपनी पहचान बनाना चाहती है। दोनों मिलते हैं, प्यार होता है और फिर शादी।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म बहुत खूबसूरती से ये दिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समझने और सम्मान देने का नाम है। गलतफहमियों में वह दोनों अलग हो जाते हैं। उनके बेटे का किरदार इस फिल्म की सबसे भावुक कड़ी बन जाता है। एक बच्चे की मासूमियत, उसका टूटा हुआ परिवार और माता पिता के बीच बता उसका बचपन, यह सब दर्शकों के दिल को छू जाता है।

इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें रिश्तों की बहुत वास्तविक तरीके से दिखाया गया। ना कोई बनावटी चमक, ना जरूरत से ज्यादा चीजें रखी गई, बस जिंदगी जैसी होती है वैसी कहानी।

इसी गीत के साथ चयन का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों के लिए भी समाप्त होता है आज का प्रसारण। कल 12:10 पर आपके खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूनम बरुआ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं अनुराधा। श्रोताओं आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, यानी वो चिकित्सा सेवा जो अचानक हुई दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों, फ्रैक्चर आदि के समय दी जाती है। इस विषय से जुड़ा आपका भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आपके सवालों के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। साथ ही डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी

0: मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या हैं?
1: देखिए, किसी भी स्थिति कोई इंसान अगर सोचता है कि अगर मेडिकल सुविधा ना ली जाए तो उसके या तो जान को खतरा हो, या उसके लिम या किसी अंग का खतरा हो, या किसी ऑर्गन का खतरा हो, और अमूमन ये स्थितियाँ ऐसी होती है कि अगर टाइमली मेडिकल केयर ना मिले तो उसको बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे आप समझ लीजिए हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, कोई छत से गिर गया, या एक्सीडेंट चोट वाली बीमारी है, या चोट हो गया किसी को, किसी ने सांप ने काट लिया, किसी को सांस की बीमारी हो गई
0: जी,
1: किसी को लकवा मार गया, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपात स्थिति है और इसमें जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा लेना अत्यंत आवश्यक है।
0: जी, सुविधाएं लेना आवश्यक है, ये आपसे जरूर जानेंगे। और बहुत सारी चर्चा अभी तो शुरुआत है और हमारे श्रोता उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आज क्या क्या हमारे लिए बहुत कुछ आप दोनों विशेषज्ञों से जानने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
3: ए भाई दर...

कभी छोटे कभी खड़े कभी खोटे कभी दुबले कभी मोटे कभी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: घर है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भावता का डर है।
1: यही श्रीमान आपका

0: श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर। यदि आपका भी कोई सवाल है तो हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैम नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं
1: जी। एक्सपर्ट को भी दोनों को जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी,
1: मैं यामिन भाई रेडियो वाला तिरोड़ी लोनी किला
0: जी। सर,
1: पर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग तड़पते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और लोग सहायता करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं कि जिससे कि कानूनी कार्रवाई होती है, तो डरते हैं कि उनका नाम लिखा जाएगा, उनको कार्रवाई में साथ रखा जाएगा। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक है, मेरा थोड़ा समझाएं।
0: प्राथमिक चिकित्सा आप जानना चाह रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जाए, और कोई डर की बात तो नहीं है जो लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल, ये जानना चाहते हैं आप ना जी।
2: जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लोग क्यों असमर्थ अपने आप को फील करते हैं और क्यों डरते हैं कि लीगल कार्रवाई या कुछ पुलिस केस या कुछ इससे घबराते हैं। तो अगर मैं जानकारी आपको दूं कि सरकार ने इस पे बहुत सारे कदम उठाए हैं और एक इस तरीके का एक नियम, लॉ या कहें कि एक गाइडलाइंस सब तरफ से आई है, जिसको हम लोग कहते हैं गुड समेरिटन लॉ। इसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो मददगार हो सड़क दुर्घटनाओं में, स्पेशली जो मदद करे, उस पर किसी तरीके का कोई भी कानूनी कार्रवाई या उसको तकलीफ ना दिया जाए। और इसमें सरकार ने इनाम का भी एक सिस्टम रखा हुआ है, और इसको हर अस्पताल अब अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे लोगों को ना उनसे हम नाम पूछते हैं, ना उनका हम डिटेल लेते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम है ताकि जो चोटग्रस्त मरीज हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, उनको मदद समय से मिल पाए। तो ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
0: तो इनको आपने जानकारी दे दी, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या हैं, तो डॉक्टर अरुण सर आपके पास आना चाहेंगे कि सिर्फ इलाज मेडिसिन के तौर पर ही हो सकता है, या कैसे इसकी रोकथाम की जाए, बचाव कैसे किया जाए।
3: जी, मेडिकल इमरजेंसी के दो पहलू हैं। हम एक वाक्य बहुत समय से सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी किसी भी चीज से बचाव अगर हम करते हैं तो उससे होने वाली सारी तकलीफों से बचा जा सकता है। अभी जो मेडिकल इमरजेंसी की बात हो रही है, उसमें जैसे मान लीजिए अभी दुर्घटना की, अभी हमारे कॉलर भाई साहब ने पूछा कि दुर्घटना में हम क्या करेंगे। तो दुर्घटना में सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि दुर्घटना से हम बचें कैसे। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानी कम होने से दुर्घटना घटती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मोटरसाइकिल चालक और हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं, या कोई रेड लाइट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, या एक पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री हैं वो अपना फुटपाथ छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं जो दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती हैं। तो पहले ये जागरूकता हो और हम इन नियमों का पालन करें कि हम दोपहिया वाहन पे हेलमेट चला के ही बैठेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे तो हम सीट बेल्ट बांध के रखेंगे, और अगर हम सवारी यात्री भी हैं तो भी हम सीट बेल्ट लगाएंगे, और अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो हम सिग्नल का, उस पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये एक उदाहरण हुआ। दूसरी तरफ एक दुर्भाग्य की बात होती है कि लोग अल्कोहल पीकर फिर गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो दुर्घटना का आमंत्रण है। तो कहने का मतलब कि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है, पूरी सावधानियां अगर हम बरतें तो दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा मेडिकल इमरजेंसी की बीमारियों में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, या किसी व्यक्ति को अचानक या स्ट्रोक हो गया और उसकी बॉडी पैरालिसिस हो गई, ये सारी परिस्थितियां होती हैं पहले से उपस्थित किसी बीमारी की वजह से। यानी किसी को उच्च रक्तचाप की अगर बीमारी है तो उसको स्ट्रोक हो सकता है, किसी को अगर हार्ट की बीमारी पहले से है तो हार्ट अटैक हो सकते हैं। ऐसे में उस मरीज के साथ साथ उनकी देखभाल करने वालों का ये दायित्व बनता है कि वो ऐसी स्थिति में ना आए। इसके लिए डॉक्टर ने जो सलाह दी है उनकी दवाई को लेके, कि आप निश्चित समय पे नियम से जो दवाइयां बताई गई है वो खाएं, जो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन कहा गया, आपके खान पान के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में, उनका अगर आप नियम से पालन करेंगे तो आप उस दुर्घटना से होने से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो मेरा तो सभी श्रोताओं से कहना ये रहेगा कि आप दुर्घटना होने मत दीजिए, दुर्घटना से बचिए। जहां भी कोई दुर्घटना

0: की संभावना दिखती है, दुर्घटना होने की जो संभावित कारण है उनको दूर कीजिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, चाहे हमारी शारीरिक स्थिति हो या फिर हम कहीं दुर्घटना बाहर शिकार होते हैं, दोनों ही डिपेंड करता है कि हम कितने सतर्क हैं। डॉक्टर साहब ने ये आपको आगाह कर दिया है, फिर भी कोई भी स्थिति आपके साथ आती है तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि ट्रॉमा की चर्चा क्यों ज्यादा होती है इतनी?
2: देखिए, ट्रॉमा भी एक इमरजेंसी है। हम अमूमन कहते हैं कि किसी चीज़ से चोट लगी, कोई गिर गया, रोड ट्रैफिक इंजरी हो गई, आपस में झगड़ा हो गया जी। ये सारे कारण हैं ट्रॉमा के। चूंकि ये रोड ट्रैफिक इंजरी सबसे कॉमन है ट्रॉमा के कारकों में, और ये 18 से 45 साल का एज ग्रुप जो है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, और लगभग हर साल हम करीब 1,70,000 से ऊपर लोगों को खोते हैं जो यंग हैं, जो हमारे उनके घर के और साथ में देश के कहिए कि ब्रेड अर्नर हैं, कंट्री के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए इसकी चर्चा ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारी यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, और ट्रॉमा एक ऐसी स्थिति है जो सर ने अभी बड़ा अच्छा बताया, इसको हम रोक सकते हैं
1: जी।
2: ये पहले से कोई बीमारी नहीं है, हम इसको बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम ये टोटल जो डेथ है 2.25 लाख के आसपास, इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर बचाव पे जाए तो।
1: चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे पास जिज्ञासाएं भी बहुत सारी आ रही हैं आज के विषय से जुड़ी हुई। आप हैं मिस्टर रवि जोशी, लिख रहे हैं कि आई नीड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रॉमा मैनेजमेंट, व्हाट आर फाउंडेशनल गाइडलाइंस एंड रिसोर्सेज इन ट्रॉमा मैनेजमेंट।
2: सो रवि जी, धन्यवाद, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले तो ये जान लें कि एक ऐसे ट्रॉमा की स्थिति या चोट वाली स्थिति हो तो करना क्या चाहिए। तो जैसे अगर मैं एक रोड ट्रैफिक इंजरी की एग्जांपल को लूं, तो सबसे पहले देखना है जो बचाव करने जा रहा हो वो देखे कि क्या मैं सेफ हूं इस जगह पहुंचने के लिए
1: जी।
2: तो अपनी सेफ्टी पहले देखे, ऐसा ना हो कि एक की जगह दो हो जाए। दूसरा कि अब वो जो घायल व्यक्ति है उसको एक सेफ जगह पे ले जाएं। सेफ जगह पे ले जाने के बाद अब दो काम करनी है हमें, एक तो एम्बुलेंस या मदद के लिए कॉल, और दूसरा कि किसी को फ्रैक्चर हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग से बहुत ज्यादा मौतें होती है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो क्या वो दबाव दे के हम रोकें उसको
1: जी।
2: और कोई फ्रैक्चर है तो क्या हम थोड़ा स्प्लिंट कर सकते हैं। जैसे ही मदद आए तो बाकी एम्बुलेंस और बाकी लोग जब आ जाएंगे तो उसकी मदद होगी, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे और बहुत सारे रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, जिसको आप देख के कॉमन पब्लिक एक ट्रॉमा में क्या कर सकती है, इसके लिए सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, आप जरूर इसका उसको उपयोग करें
1: जी। डॉक्टर साहब, कैसे जाना जाए कि इमरजेंसी की स्थिति है, क्योंकि वो नाजुक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि घर में ही क्योरेबल हो, कैसे जाना जाए कि इमरजेंसी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है?
2: सो एक तो ये है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ठीक था, अपना काम सारा कर रहा था या बातचीत कर रहा था, उसमें कोई उसको तकलीफ नहीं थी, अब वो कह रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ प्रोलॉन्ग हो रही, लंबी चल रही है। लंबी कहने का मतलब कि आपको लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट उससे भी ऊपर जा रहा हो, या लगे कि जैसे बेहोश हो गया कोई, या अचानक से धड़कन बहुत तेज हो गई, या और कोई स्थिति है जैसे किसी को चाकू से कट गया या कुछ हो गया, तो ये सारे आपात स्थितियां हैं। बर्न हो गया, स्नेक बाइट हो गई, किसी ने पॉइजन खा लिया, ये सारे आपात स्थितियां हैं जिसमें हमें हेल्थ की सुविधा या मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा नंबर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे जो कि जिस पर तुरंत हेल्प मिल सके हमारे श्रोताओं को?
2: अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक आपात स्थिति के लिए नंबर दी गई है 112, सो 112 पे आप कॉल करके मेडिकल हेल्प या किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी तो उसी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जाएगा
1: जी।
2: अगर आपको लगता है और आपको जानकारी है कि आपके यहाँ ये एम्बुलेंस का नंबर है, जैसे दिल्ली में 102, बाकी जगहों पे 108, ये कॉमन नंबर्स हैं जिस पे लोग फोन करके एम्बुलेंस सुविधाएं लेते हैं, तो उससे आप मदद ले सकते हैं
1: जी। तो उम्मीद है श्रोताओं कि आपने ये नंबर्स नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि आज जो विषय है हमारा बहुत ही हटके है, और हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ताकि आपको अगर कोई भी जो है इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, और किस तरह से आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। यदि आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत हमें कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। अब वापस आना चाहेंगे आपके पास डॉक्टर साहब, के जो ये सारी स्थितियां हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बचाव की स्थिति तक पहुंचने के लिए अगर हमें जो पहला ट्रीटमेंट देना होता है घर पे, वो

0: किस तरह से शुरुआत की जाए?
1: जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं या प्राथमिक चिकित्सा है, ये निर्भर करती है कि दुर्घटना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप घर की बात करें कि घर में कोई बुजुर्ग इंसान अगर बाथरूम में गिर गए तो सबसे ज्यादा रिस्क इस बात की होती कि कहीं उनकी कूल्हे की हड्डी ना टूट गई हो। ऐसे में वहां से सबसे पहले उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पे लाके और एक फ्लैट सरफेस पे, यानी एक नरम गद्दे की जगह एक हार्ड सरफेस पे उनको लिटाया जाए और फिर ये समझा जाए कि उनको कहाँ दर्द हो रहा है। फिर दूसरी चीज हमें ये देखनी होती कि क्या वहां से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, किसी पार्ट से चोट लग के वहां से कोई खून तो नहीं निकल रहा। अगर वो बेहोश हो गए तो वो बता नहीं पाएंगे, तो वो हमें देखना जरूरी है। और जैसा कि डॉक्टर तेज प्रकाश ने अभी बताया कि हमें एम्बुलेंस के लिए या मेडिकल सुविधा उपलब्ध करने के लिए सबसे पहले कॉल कर देना चाहिए कि जब तक एम्बुलेंस आएगी या जब तक मेडिकल सर्विसेज आएंगी तब तक हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें वाइटल देखना चाहिए कि उनकी नब्ज चल रही है कि नहीं, उनकी सांस आ रही है कि नहीं, और वो होश में है कि नहीं। अगर ये तीनों सुरक्षित हैं, यानी उनकी नब्ज भी मिल रही है, उनको सांस भी आ रही है और वो शायद बेहोश नहीं है, तो हम ज्यादा सुरक्षित स्थिति में हैं। अगर मान लीजिए वो बेहोश हो चुके हैं तो सबसे पहले ध्यान रखने की चीज है कि उनको कुछ खिलाने या पिलाने का प्रयास हम ना करें और उनकी सांस हम देख सकते हैं कि उनकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। नाक के पास उंगली ले जाके हम पता कर सकते हैं कि हवा आ रही है नहीं आ रही है। अगर उनकी गर्दन टेढ़ी है तो हम उसको जरा सीधी करने का प्रयास करें ताकि सांस की नली खुले और उनको सांस आती रहे। और ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई जिसमें बर्न हो गया, बच्चा है वो खेल रहा था, किचन में पहुंच गया, उसकी हाथ में आग लग गई। अब वो आग लगने से वो झुलस आ गया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम ये होता है कि हम उसको नॉर्मल वाटर, जो टैप में पानी आता है, जो नल में पानी आता है, उसके नीचे हाथ रख दें, लेकिन रगड़े ना। क्यों ना रगड़ें? क्योंकि रगड़ने से उसकी जो जली हुई स्किन है वो उतर जाएगी, वो बहुत हानिकारक होगा। सिर्फ ठंडे पानी में, नॉर्मल ठंडे पानी में, बर्फ लगाने की जरूरत नहीं है, उसको साफ कर दें और उसके बाद हाथ को खुला रखें। अब उसमें स्थिति है कि अगर हमारे पास घर में कोई ऐसी क्रीम है, जैसे कॉमनली हम कहते हैं कि फर्स्ट एड किट में किट के अंदर सिल्वर सल्फाडाइजिन ऑइंटमेंट होती है, सिल्वर एक्स के नाम से भी आती है, लोग आमतौर पर जानते हैं, वो लगा दिया जाए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो उसको उस हालत में ही रख के और हमें डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना है, मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत ले जाना है। इसी तरह से एक और दुर्घटना होती है घरों के अंदर कि करंट लग गया, कोई लाइव वायर था जिसकी वजह से करंट लग गया। करंट लगने की स्थिति में जो सबसे पहला काम है, जो सबसे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि हम जल्दी से उस इंसान को पकड़ के अलग करना चाहते हैं, ये हम ना करें क्योंकि वो ऑलरेडी करंट से चिपका हुआ है। हम अगर उसको छूने जाएंगे तो वो करंट हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि जिस वायर से और वो करंट आ रहा है, किसी लकड़ी के टुकड़े से या जो ऐसी कोई भी चीज प्लास्टिक हो जिसमें से करंट पास नहीं करता, उसकी मदद से पहले हम उस सोर्स को हटाएं जो उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कर रहा है। अगर वो हम हटाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अब हम मरीज के पास जाके देख सकते हैं कि उसकी हृदय की गति तो नहीं रुक गई है या उसको वो बेहोश तो नहीं हो गए हैं, बाकी का इलाज उसके बाद शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरह की कौन सी इमरजेंसी है इस पे निर्भर करेगा कि पहला एक्शन क्या लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा, कोई भी दुर्घटना आपके सामने घटती है घबराइए मत, संयम से काम लीजिए और ध्यान रखिए कि मरीज की हम सबसे अच्छी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको सुरक्षित स्थान पे ले आए, उसके आसपास भीड़ ना इकट्ठी होने दें और फिर उसको जो जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है उसमें जो फर्स्ट एड दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, वो हम शुरू करें और एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था तुरंत करें।
0: जी डॉक्टर अरुण सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बिल्कुल जो है विस्तार से आपने बता दिया। अब जो है समर स्ट्रोक भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इसमें भी यही प्राथमिक उपचार होगा या कुछ डिफरेंट होगा?
1: नहीं, मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहली चीज है कि समर स्ट्रोक यानी हीट वेव से जो स्ट्रोक होता है उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जैसे सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जाते हैं कि देखिए अभी गर्मी की लहर हो रही है, अभी हीट वेव है, अब लू का प्रकोप चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम पहले सावधानी कहते हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो आप बाहर ना जाएं, गर्मी से अपने आप को बचाएं। दूसरी चीज है कि अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को निश्चित रखें। आप डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी से पानी कम ना होने दें। इसलिए आपको अगर बाहर जाना भी है तो आप फ्रीक्वेंटली समय समय पर थोड़े थोड़े मात्रा में पानी

0: पीते रहे, ठीक है। और तीसरी चीज है कि अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद भी हीट स्ट्रोक होता है तो उसके लक्षण को पहचानिए। लक्षण है कि आपके जिसको हीट स्ट्रोक होगा उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 104 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है, और उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो सबसे पहले उस इंसान को उस गर्मी की स्थिति से लाके एक छांव वाली जगह में, एक ठंडी जगह पे लिटाएं। अगर वो होश में है तो उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, अगर वो होश में नहीं है तो सबसे पहले उनको पानी मत पिलाइए, क्योंकि जो बेहोश है उसको पानी पिलाने का अगर हम प्रयास करेंगे या कुछ खिलाने का प्रयास करेंगे तो सांस की नली में जा सकता है, इसलिए बेहोश इंसान को हम ये ना करें, लेकिन उसके आसपास हवा हो, ठंडक हो, छांव हो, ये व्यवस्था हम जरूर करें, और उसके बाद एम्बुलेंस आते ही उनको हॉस्पिटल ले जाएं। ये समर स्ट्रोक में बहुत जरूरी। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा मेरे श्रोताओं के लिए कि आप ये दुर्घटना ना होने दें, ये जागरूकता रखें, उनको पानी पिलाएं, उनको गर्म, और खास करके दो उम्र के वर्ग में बच्चों को और बुजुर्गों को ऑलवेज इस बात के लिए मना करें कि वो गर्मी की स्थिति में और लू की स्थिति में बाहर जाने से बचें जितना प्रैक्टिकली संभव हो।
1: बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया भी कि पानी पिलाना चाहिए नहीं। अभी हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, जो रोड के किनारे एक्सीडेंट हो जाते हैं इन लोगों को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? जैसे कोई गिर गया है तो बेहोश हो जाता है, उसे पानी पिलाना चाहिए कि नहीं, जानना चाहते हैं ये।
2: तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये है कि पानी पिलाने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई उससे बेनिफिट नहीं होगी, लेकिन उससे क्या हार्म हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर वो व्यक्ति बेहोशी के हालत में है, इवन आधे बेहोश हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसका जो होश है उतना नहीं है, कम है, तो वैसी स्थिति में अगर देंगे और वो पानी जो है वो सांस की नली में चली गई तो ये एक बहुत बड़ा उसके लिए लेनी की देनी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनको दुर्घटना हुआ हो उसको ना कुछ पिलाएं, ना कुछ खिलाएं, और बेहतर हो कि उसको बिठा के ना रखें, लिटा के रखें। सो बहुत बार हमने देखा है कि कोई गिर गया हो प्रार्थना में, जैसे बच्चे गिर जाते हैं और उसको फिर हम बिठाते हैं ऑफिस में, कभी कोई गिर गया उसको बिठाते, बिठाना नहीं चाहिए, हमें उसको लिटा के रखना चाहिए। तो सेफ प्लेस पे, जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्लेस अच्छा है, वहाँ पे लिटा के उसको रखिए और मदद के लिए आगे कॉल करिए नेक्स्ट स्टेप में।
1: तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, आगे भी ये सवाल जवाब जारी रहेंगे और समाधान भी जारी रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ अनुराधा और आज हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर और हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आज के विषय में विस्तार से आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और हमारे दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आपसे बहुत कुछ आगे जानेंगे लेकिन फिलहाल एक सूचना आपको दे दें। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल ID healthairdelhi@gmail.com पर। तो इस सूचना के बाद अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सवाल जवाब जारी रहेंगे। आपको बता दें कि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं आपसे बहुत सारी बातें अभी जानने को है। तो सबसे पहले मेरा अब सवाल है ब्रेक से वापस आने के बाद कि गोल्डन आर क्या होता है और गंभीर चिकित्सा में क्या है अलग अलग केसेस में। ये
2: बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि समय, इमरजेंसी में समय का सारा खेल है। अगर गोल्डन आवर की बात करूं तो ये चोटग्रस्त मरीजों में पहली बार इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट ढंग से बताया गया कि अगर चोट लगने से 1 घंटे के अंदर अगर उसकी डेफिनेटिव केयर या मैं कहते हैं कि मेन केयर, उसकी मेडिकल केयर स्टार्ट हो जाए तो बचने की या आउटकम्स के अच्छे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ चोट तक या ट्रॉमा तक लिमिटेड नहीं है। अगर हार्ट अटैक के मरीजों को हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि 30 मिनट के अंदर में, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अगर 120 मिनट या 2 घंटे के अंदर में हो जाए किसी की तो ये पहले जैसा ही काम करेगा, इसका शरीर, इनका स्वास्थ्य पहले जैसा वापस आ सकता है। सिमिलरली स्ट्रोक में जो लकवा मारना जिसको कहते हैं उसमें भी समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दमे के मरीज में किसी को दमा की इमरजेंसी आ गई, सांस उखड़ रहा है, उसमें भी है। किसी का हार्ट चलना बंद हो जाए उसमें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हर मिनट अगर

0: है SMS हमारे पास KD त्रिपाठी जी का रांची से आया हुआ है, लिख रहे हैं कि मैं 79 ईयर ओल्ड हूँ और एम्बुलेंस नंबर क्या 108 है, ये जानना चाहते हैं। हालांकि आपने अभी बताया है झारखंड रांची से ये सवाल आया है, और मेरा भी एक सवाल है कि जब जैसे टीम वगैरह क्या भेजी जाती है आपकी ओर से, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स लोग जैसे कि अभी इनका सवाल है कंफ्यूज ये हो रहे हैं, पहले इनका जवाब दे दें फिर हम अपना सवाल करेंगे।
1: जरूर जरूर, देखिए एम्बुलेंस सर्विसेज सरकार की तरफ से और प्राइवेट लोगों की तरफ से भी उपलब्ध है, और पिछले दशकों में हमने देखा और सरकार ने भी यह पाया कि अलग अलग एम्बुलेंस के नंबर के होने की वजह से लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो सुविधा होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण से ही केंद्रीय सरकार ने एक नंबर 112 नंबर जारी किया है, और लगभग अब धीरे धीरे करके सारे स्टेट अब इस नंबर को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो ये एम्बुलेंस की जरूरत हो तो उस पर कनेक्ट कर देंगे, या कोई और आवश्यकता हो तो उस पर कनेक्ट कर देंगे।
0: जी।
1: दूसरा एक और है कि कोई आपात स्थिति हो तो कहीं किसी किसी राज्यों में लोग 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है उस पर कॉल करते हैं, तो थोड़ी मैं कहूंगा दोनों बात कि 112 उपलब्ध है, जरूर सुविधा उठाएं, अगर ना उपलब्ध हो आज ही जानकारी लें कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है।
0: जी बहुत अच्छी बात है, और अब हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमसे, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। आपका बहुत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना।
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं सर।
2: नमस्ते मैडम जी, मैं मुजफ्फर मलेर कोटला पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है, नाम बता दिया आपने, अब बताएं कि सवाल क्या है, दोनों विशेषज्ञ सुन रहे हैं आपको।
2: मैडम जी मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बार रास्ता चल रहा था अपने गाड़ी पे,
0: जी
2: तो कुछ मतलब एक बंदा ना एक्सीडेंट होकर के रोड पे गिरा हुआ था, ठीक है
0: जी।
2: तो वहाँ पे ना कोई उसको उठाने वाला नहीं था, ठीक है। तो मैंने देखा तो मैं सोचा नहीं इसका मदद मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको ना उठा करके अपने गाड़ी में, एक बंदे को मैंने बोला भाई ऐसा करो इसको ना मेरे गाड़ी में बैठाओ और मेरे साथ चलो
0: जी।
2: इसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है, जबकि उस टाइम एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस का फोन नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैं उसको हॉस्पिटल की कलर तो मैंने लेके गया, ठीक है, उस बेचारे को,
0: ठीक है।
2: और वहाँ जाने के बाद जो है ना हॉस्पिटल वाला बोलता है जो भाई इसका ना पुलिस केस बनेगा, ठीक है, जब तक पुलिस नहीं आएगा मैं इसको एडमिट नहीं करूंगा अपने हॉस्पिटल में,
0: ठीक है।
2: तो मेरा कहने का मतलब जैसे पुलिस आया तो मेरे से ना पूछताछ बहुत कुछ किया, ठीक है, और मेरे से जो है ना बहुत आना जाना कराया जो कैसे हुआ तुम कहाँ थे कैसे, तो यार मैं उसका मदद किया तो मैं उसको ये थ्रू दिखा रहा जो मुझे
0: जी। देखिए सर ने, डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले इस विषय की चर्चा की थी, मुझे लगता है कि आप उस समय कार्यक्रम सुन रहे थे कि नहीं। सर एक बात इनको शॉर्ट में बता दीजिए,
1: जरूर,
0: क्या
1: जरूर।
0: रूल क्या नियम अब बन चुके हैं,
1: नियम जिसको हम लोग गुड सैमरिटन लॉ कहते हैं। एक तो बड़ा अच्छा सवाल है और ये झिझक आज भी लोगों के बीच में, तो आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने इस सवाल को दोबारा उठाया है। सो गुड समरिटन लॉ ये कहता है कि जो भी इस तरीके के दुर्घटना में शिकार व्यक्ति की मदद करता है उसे अस्पताल ना नाम पूछेगा, ना मरीज के इलाज के लिए कोई फीस या किसी और भी चीज़ की डिमांड कर सकता है। दूसरा, ये अस्पताल की जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को बुलाना है तो बुलाए, मेडिको लीगल कार्यक्रम जो भी उसके लिए करना है वो करे, और किसी भी तरीके से जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने जैसे आपने बड़ा अच्छा मदद किया है तो कोई हरासमेंट ना करे, सरकार की नियम यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंच सके।
0: जी डॉक्टर साहब अब बात कर लेते हैं कि ट्रॉमा केवल शारीरिक ही माना जाता है, ऐसा है क्या, मानसिक स्थिति में भी ट्रॉमा हो सकता है?
1: देखिए ट्रॉमा तो दोनों तरीके से डिफाइन करते हैं, एक फिजिकल ट्रॉमा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि शरीर में चोट किसी तरीके की लगी और कोई डैमेज हुआ उससे
0: जी।
1: लेकिन चोट लगने के बाद भी बहुत तरीके की मानसिक परेशानियां होती हैं, एक तो जिसको कि हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि वो जो स्थिति थी ट्रॉमा की जिसमें एक्सीडेंट या कुछ हुआ था उसकी यादें आती रहती है और साइकोलॉजिकल बड़ा स्ट्रेस रहता है। तो इस पे भी बहुत गंभीरता से चर्चाएं चल रही हैं और बहुत सारे पहलू हैं जिस पे लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब ये लोग आते हैं चोटग्रस्त तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए आने वाले समय में। इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या अदर डॉक्टर्स भी हैं, और मैं चाहूंगा कि सर भी इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें।
0: जी बिल्कुल
3: जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक आपातकालीन स्थिति भी होती है। जैसे मान लीजिए कि

0: कोई बहुत तनावग्रस्त है या डिप्रेशन में है और उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, यानी आत्महत्या की स्थिति पैदा हो रही है, वो करना चाह रहे हैं, ये अपने आप में एक इमरजेंसी है। अगर कोई भी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आता है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये व्यक्ति अभी ऐसा कोई अनचाहा कदम ले सकता है, तो उसको रोकने के लिए प्रयास करना भी एक इमरजेंसी है, एक इंसान को जिंदगी में वापस लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये तो मानसिक रूप से, दूसरा आपने भी देखा होगा और कई बार अखबार में भी हम पढ़ते हैं कि कोई पुल के ऊपर गया और पुल पर चढ़ के खड़ा हो गया कि अब वो आत्महत्या करने के लिए, कूदने के लिए तैयार है। ऐसे में राहगीर जो है, जो उसको देखते हैं, वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये मानसिक इमरजेंसी भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मान लीजिए आज रिजल्ट निकला है और किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत खराब आया, तो हमें ये एक एंटिसिपेशन है कि जिस बच्चे का रिजल्ट खराब आया कहीं वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त तो नहीं हो गया, उस चीज को रोकना, उसके लिए तैयार करना। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से परीक्षा से पहले बच्चों से कहते हैं, वही चीज़ हर आदमी को करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी तनाव की स्थिति है, किसी के घर में कोई दुर्घटना घट गई, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की मौत हो गई, अचानक आकस्मिक मौत हो गई, उसका जो मानसिक प्रभाव घर के बाकी लोगों पर पड़ेगा उसको समझना और उन लोगों को उस मानसिक तनाव की स्थिति से निकालना आगे की दुर्घटनाओं से बचा सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
1: जी, मैं एक जोड़ना चाहूंगा इसमें, जो बड़ा अच्छा सर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी हमेशा बच्चों के साथ बातें करते हैं एग्जाम के पहले, तो मेरा आपके माध्यम से सारे स्कूल और पंचायत से रिक्वेस्ट होगा कि क्यों ना हम अपने पंचायत के लेवल पे या स्कूल के लेवल पे परीक्षा के उपरांत एक ऐसे स्टूडेंट से मिले और उनको बताएं और इन स्थितियों को कैसे टालें, इस पे भी मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए दोनों लेवल पे, पंचायत और शिक्षकों के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे। तो ये मेरा एक सबमिशन है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आप लोगों का। और ये बात यहाँ पर देखने को आती है कि अगर बच्चा बचपन से ही स्ट्रांग होगा, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा जीवन उसको मिलेगा। और उसके लिए जो आपने बताया है कि चर्चा होनी ही चाहिए और उस पर थोड़ा सा गंभीरता से लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत लाइटली लिया जाता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके साथ कैसा भी अगर बिहेव किया जाता है तो थोड़ा लाइटली लोग लेते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं आहत होता है। इसलिए उसको संभाल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा, कहा जाता है कि एक कच्चा घड़ा होता है, उसको जैसा ढालेंगे वैसा वो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आ चुका है रमेश कुमार सिंह जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल यह है कि जब हम एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर उन्होंने इसी समस्या का जिक्र किया है जिसका अभी हम जवाब दे चुके हैं। तो रमेश जी, उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा और आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल अभी हमारे पास बाकी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि ट्रॉमा सेंटर क्या है, ये सामान्य अस्पताल से क्या कुछ अलग होता है, किस तरह की सुविधाएं होती हैं इसमें?
1: चूंकि आपने अभी बात करी कि गोल्डन आवर की बात है, तो सारी चीज समय से व्यवस्थित तौर पे होनी चाहिए एक मरीज के इलाज के लिए। तो जैसे हार्ट के सेंटर्स बनने शुरू हुए, तो इस आपात स्थिति में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत पड़ती है हर जान को बचाने के लिए। तो शुरुआती जो सेवाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी सेवा। उसके बाद जो किसी एक स्पेसिफिक तरीके की इंजुरी है, जैसे सर का चोट है, तो आपको फिर हेड इंजरी को मैनेज करने के लिए आगे की व्यवस्थाएं भी चाहिए। किसी को फ्रैक्चर है, स्पाइन की इंजरी है, तो उसको आगे की व्यवस्थाएं चाहिए। किसी को आईसीयू की जरूरत है, तो इमरजेंसी में इलाज होने के बाद आईसीयू में उसको केयर चाहिए। तो ये पूरी व्यवस्थाओं को एक जगह व्यवस्थित करने का जो काम किया गया है, इस तरीके के यूनिट्स या सेंटर्स बना के किया गया है। अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट भी पास किया है इसके लिए कि जो सेकेंडरी लेवल के हमारे जिला अस्पताल हैं उसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा की सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेडिकल कॉलेज के लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे तो ये चल रही थी, लेकिन अब इसको डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल पे भी कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए भी बड़ी सारी योजनाएं और कार्यबद्ध तरीके से कैसे इसको आगे ले जाए। तो ये एक तरीके से व्यवस्थित पूरा सेटअप है जिसमें कि कोई भी ट्रॉमा का मरीज आए, किसी भी तरीके की चोट का, उसका समुचित एंड समग्र इलाज हो पाए।
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं सर।
3: मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: जी बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
3: मेरा पूछना है कि जब

0: हेलो, मुझे लगता है कि इनसे संपर्क टूट गया है और सवाल ये करने जा रहे थे, तभी मुझे लगता है कि नेटवर्क एरिया से ये बाहर चले गए क्योंकि आवाज़ आ रही थी पीछे सड़क की। डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे थे कि किस तरीके की हमारे पास सुविधाएं होती हैं ट्रॉमा सेंटर में।
1: जैसा मैंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में एक जैसे ही आप कोई मरीज आता है तो एक तो रिसेप्शन पे जो भी अराइवल एरिया या गेट के पास जो लोग हों खड़े, उनको इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि इस मरीज को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से एम्बुलेंस से उतार के अंदर लेके जाएं।
0: जी
1: जब अंदर जैसे ही जाते हैं तो हमारी नर्सेस एक आइडेंटिफाई करने का तरीका, जिसको हम कहते हैं कि सीरियस कौन है और कौन कम सीरियस है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में ट्रायाज कहते हैं, कैटेगरी में बांटना, ताकि जो सीरियस है उसको जल्दी इलाज मिले और जो थोड़ा इंतजार कर सकता है वो
0: राइट जी
1: प्रायोरिटाइज कर ले हम। तो ट्राइजिंग हो गई, ट्राइज होने के बाद जान या लिम, या मतलब हम कहते हैं कि हाथ पैर में अगर कोई ऐसा हो तो इसको बचाने के लिए जो चाहिए उसको सबसे जल्दी आपको देखना पड़ेगा। इसी को जो व्यवस्थित तौर पे हम कहते हैं ABCD वे में, एक डॉक्टर की भाषा में हम कहे तो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिससिटेशन, कहना करना या जान बचाने की जो सारी प्रक्रियाएं होती है उसको करना। इसको करने के बाद हम जान पे खतरा तो टाल दिया हमने, अब हमें देखना है कि चोटग्रस्त कौन कौन सा भाग है, कौन सा अंग है, उसके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: तो अब यहाँ पे जांचों का समय आता है, थोड़ी जांचें हम करते हैं, फिर अन्य विभाग के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं साथ में कि इसका फ्रैक्चर है तो हमने इमरजेंसी में केयर, ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था, वो हमने रोक दिया है, फ्रैक्चर का एक्सरे हो गया है, फ्रैक्चर का मूवमेंट हमने रोक दिया है, ये सारे चीज हमने देख लिए, अब आप इसको आगे का इलाज करिए। तो कहेंगे ठीक है, इसको हम भर्ती करके ऑपरेशन करेंगे, या हो सकता है कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम देखभाल करके छुट्टी करेंगे। तो इस तरीके से पूरा व्यवस्थित तौर पे सारे सीक्वेंस में इसका इलाज चलता है ट्रॉमा
0: जी,
1: सेंटर में।
0: आगे भी आपसे अभी जानेंगे कि टेस्ट किस तरह के होते हैं और क्या क्या जरूरी होते हैं, करा ही लेने चाहिए, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: और दोनों डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। रघुवीर सिंह
1: नमस्कार,
2: ठाकुर उत्तराखंड से।
0: जी जी सर,
2: मेरे को ये पूछना था कि जैसे नॉर्मल चक्कर आ जाते हैं कमजोरी से या किसी कारण से, बच्चों को या किसी को भी घर में, तो उसमें जैसा सर ने बोला कि उसमें क्या उनको पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए,
0: क्या कहेंगे सर, बताएं। अरुण सर
3: जी,
0: क्या कहना चाहेंगे
3: इस प्रश्न को पूछने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम समस्या होती है, किसी भी इंसान को अगर चक्कर आ गए और वो बेहोश होने लगे तो उसे सबसे पहले लिटा दीजिए, एक साफ सुथरी जगह पे, खुली जगह पे, घर में, घर के अंदर भी लिटा दीजिए। और आम तौर पे ये चक्कर आना होता है तो हम लिटाने के बाद कहते हैं कि उनके पैर आप थोड़े से पकड़ के दोनों पैर ऊपर कर दीजिए। आमतौर पर क्या होता है कि लंबे समय तक खड़े रहने से या कमजोरी की वजह से और रक्त का जो प्रवाह है वो प्रवाह पैरों की तरफ हो जाता है, इससे मस्तिष्क में रक्त नहीं पहुंच पाता, इसलिए चक्कर खा के कोई गिर जाता है। तो सबसे पहला काम यही करें कि उसको लिटा दें, ये देखें कि उसकी सांस ठीक हो रही है, यानी उसकी गर्दन मुड़ी हुई नहीं है, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और दोनों पैरों को हम थोड़ा सा धीरे से ऊपर उठा दें तो रक्त का प्रवाह अब जब फिर से हृदय और ब्रेन की तरफ होने लगेगा तो उनको होश आ जाएगा। अगर इसके बाद भी उस इंसान को होश नहीं आता है तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये समस्या किसी और पीछे की किसी बीमारी की वजह से हुई है, तो उसमें ये आपातकालीन स्थिति बन सकती है। और अगर हम देखें कि उसकी सांस आ जा रही है, उसकी नब्ज चल रही है, तो अब सबसे पहले उसे हम निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने की व्यवस्था करें। और अगर वो बेहोश हैं, उनको होश नहीं है, तो उनको पानी पिलाने का या कुछ भी खिलाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर वो होश में है, बात कर सकते हैं, तो बैठा के आप उनको पानी पिला सकते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि वो इस स्थिति में है या नहीं है, और तुरंत मेडिकल सुविधा लेने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर या निकटतम डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, ये जरूरी होगा।
0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: जी नमस्कार,
0: नमस्कार सर,
4: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी अभी
4: मेरा
0: आपका
4: पूछना है।
0: हाँ, जी बताएं।
4: जी मेरा पूछना है कि जब किसी इंसान पर एसिड अटैक हो तो हम लोगों को क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं।
1: ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है गौतम जी, कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एसिड अटैक हो तो क्या करना चाहिए। तो एक तो ये

0: है कि किसी भी तरीके का, जैसे एक लिक्विड हो गया या किसी भी तरीके का ऐसा हो, तो पहले तो उसका एक्सपोजर को या उसके असर को कैसे कम कर सकें। तो हम लोग कहते हैं कि और एसिड उस पर ना गिरे, पहले तो हम ये देखें कि एसिड कैसे कम हो सकता है। दूसरा बात है कि आप उसको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाना पड़ेगा। इस बीच में आप इतना कर सकते हैं कि उसको, जैसे सर ने पहले बर्न के केसेस में, जैसे जो प्रिकॉशन हम जले हुए मरीज के लिए लेते हैं, उस तरीके की प्रिकॉशन इसमें भी लेनी पड़ेगी आपको। और आप अननेसेसरी उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाओं को अवेल करें। और इसको आप वेट नहीं कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि चेहरे पे एसिड अटैक कॉमन होते हैं, जिसमें फिर सांस की नली में भी वो एसिड जाने की समस्या, सांस लेने की समस्या, ये सारी समस्याएं बहुत तेजी से अग्रसर होती है। तो इसको मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी हो सके उस पे हम लेके जाएं।
1: जी, तो यहाँ पर आपने इनका मार्गदर्शन कर दिया। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और हम चर्चा कर रहे हैं आज किस तरह की इमरजेंसीज होती हैं और किस तरह से आपको सतर्कता बरतनी है। लगातार इस विषय पर हम

0: हमारे दो विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम मैसेज यहाँ पर देखना चाहेंगे। हमारे पास ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता जी, बबीता रानी गुप्ता जी का मैसेज आया हुआ है। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, विषय भी बहुत अच्छा है। आज आपातकालीन पर बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफी जानकारी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर गुप्ता जी और बबीता जी, अगर आप कोई सवाल लिखते तो और भी अच्छा लगता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है और बारी बारी से मैं जानना चाहूँगी कि आप उपचार बताएं। और हीट प्रॉब्लम, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये देखा जाता है कि लोग आमतौर पर मान लेते हैं कि ये गैस की समस्या है, लेकिन कैसे जाना जाए कि ये हार्ट की ही प्रॉब्लम है?
1: तो देखिए, अक्सर ये देखा जा रहा है कि 35 साल या उससे ऊपर, पहले तो और ज़्यादा इस उम्र में होता था, लेकिन आजकल थोड़े यंग एज में भी देखे जा रहे हैं कि सीने में बाईं तरफ दर्द, या कहें कि सेंट्रल चेस्ट में बीच में भी दर्द
0: जी।
1: और अक्सर ये बीच का दर्द होता है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कराता है हमें कि ये गैस है
0: जी।
1: तो पहले तो कोई भी ऐसा दर्द जो सीने में महसूस हो रहा हो, भारीपन लग रहा हो, घबराहट महसूस हो रही हो, जबड़े की तरफ जा रहा हो या बाईं हाथ की तरफ जा रहा हो, पसीने आ रहे हो और ये दर्द आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है और ये 20 मिनट से ऊपर खींचता चला जा रहा है, तो ये लक्षण है, आप मान के चले कि ये कुछ भी हो सकता है। तो घबराने के बजाय इसके बारे में सोचे कि इस पे आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और इसको गैस समझ के इग्नोर ना करें पहली बार।
0: बिल्कुल।
1: तो अब आपको आगे जो भी पास में ऐसी सुविधा है जहाँ पे ECG हो सकता है और डॉक्टर की सुविधा मिल सकती है, वहाँ के लिए आपको आगे जाना चाहिए
0: जी। अरुण सर से मैं भी जानना चाहूंगी कि बचाव किस तरह से हो सकता है इस स्थिति में।
2: जी, डॉक्टर तेज प्रकाश ने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि गैस है या हार्ट अटैक है, और ये हमें समझना होगा कि इसका पूर्वानुमान होना चाहिए। पूर्वानुमान कैसे होता है? अगर घर में एक हाइपरटेंशन के मरीज हैं या उनके उनकी पूरी जांच हो चुकी है और पता है कि इनका जो हार्ट है वो ऑलरेडी कम्प्रोमाइज है, इनके हार्ट अटैक होने की संभावना है, ऐसे इंसान में अगर इस तरह के लक्षण आते हैं, जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि सीने में सेंट्रल पार्ट में दर्द होता है या बाईं तरफ दर्द होता है, तो शुरू में हमें लगता है कि अच्छा हो सकता है कि हमें घबराहट हो रही है, पेट कुछ ज़्यादा खा लिया होगा या कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए होगा। इससे हम बचें, और ऐसे लोगों में खास करके जिनको पहले से इस तरह की हार्ट की बीमारियां मौजूद हैं उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये पूर्वानुमान रखना बहुत ज़रूरी है कि खास करके बुजुर्गों को, हाइपरटेंशन के मरीजों को और जिनको कार्डियक बीमारी पहले से है उसमें अगर ये लक्षण आते हैं तो हम ये इग्नोर ना करें कि ये गैस की हो सकती है, तुरंत उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें या उनको हॉस्पिटल ले जाएं। बहुत अच्छी बात होगी कि हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगे कि वो कुछ नहीं था, गैस थी, लेकिन वो जो रिस्क थी कि अगर हार्ट अटैक होता तो हमने काश कोई सही फैसला ले दिया होता, हम उस गिल्ट से बच पाएंगे। मैं इसमें अनुराधा जी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो इमरजेंसी बनते हैं, वो हमें अगर पहले से पता है, अगर हमारे घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज है तो डायबिटीज़ के मरीज में देखिए दो चीज़ें होती हैं, अधिक शुगर होने की वजह से एक मेडिकल टर्म होता है कीटोएसिडोसिस, जिसमें भी इंसान बेहोश हो जाता है, या डायबिटीज़ के मरीज ने अपनी डायबिटीज़ की शुगर कम करने की दवाई खा ली लेकिन उसके बाद खाना नहीं खाया तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति होती। इन दोनों स्थिति में मरीज जो है धीरे धीरे बेहोशी की तरफ बढ़ता है और बेहोश हो जाता है। तो जब घर में एक डायबिटीज का मरीज है तो इस बात की सावधानी अगर हम रखें कि भाई वो ज़्यादा देर तक भूखा ना रहे और वो कभी गलती से भी बहुत ज़्यादा शुगर या शुगर वाली चीज़ें ना खा ले, दोनों स्थिति आपातकालीन स्थिति की तरफ ले जाएंगी। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिसे हम गांव में देहात में अभी भी मिर्गी के दौरे के नाम से जानते हैं, उसमें भी ये स्थिति होती कि जिन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी है उनसे कहा जाता है कि आप लगातार अपनी दवाइयाँ खाएंगे, कोई भी दवाई मिस नहीं करेंगे, अगर किसी वजह से दवाई हो गई तो ये रिस्क रहती है कि उनको मिर्गी का दौरा हो सकता है, उनको एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। तो ये सावधानी रखना कि दवाई समय पर दी जा रही है, उचित मात्रा में दी जा रही है, दवाई कभी मिस नहीं हो रही है, और ऐसे व्यक्ति में अगर पहले के लक्षण आते हैं कि क्या होता है कि एक जी घबराने लगता है, उनको चक्कर से आते हैं, उसके बाद वो पूरा एपिलेप्सी का एक अटैक होता है। तो वो तुरंत समझते ही उनको लिटा देना, उनकी गर्दन सीधी करना, और ये ध्यान रखना कि कहीं जो जीभ है वो उलट ना जाए, जो टांग है वो पीछे की तरफ ना चली जाए। तो उसमें आमतौर पर हम कहते हैं कि देखिए, अगर

0: वो बेहोश होने लगा है, उसको कन्वल्शंस हो रहे हैं, तो किसी तरह से उसके जबड़े को खोल के उसके अंदर एक प्लास्टिक की चम्मच या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दें कि उनकी जीभ उलट ना जाए, ताकि उनको फर्दर किसी डैमेज से या दुर्घटना से बचाया जा सके। तो जिन घरों में ऐसे बीमार होते हैं वो डॉक्टर से ज़रूर ये सलाह लें कि डॉक्टर साहब इस बीमारी में कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, कौन सी आपातकालीन स्थिति घर में हो सकती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से मरीज के परिवारजनों को अपनी तरफ से और ये प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए ताकि वो उस चीज़ के लिए तैयार रह पाए। जो जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं उनमें ये जो सावधानी है बहुत काम आएगी किसी दुर्घटना से बचने के, या उस मरीज के साथ कोई भी मतलब अनएक्सपेक्टेड घटना ना घट जाए उसमें ये बहुत योगदान रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते
2: हैं? एक जस्ट मैं ऐड करना चाह रहा था, जो मिर्गी के दौरों के बारे में बताइए, बड़े होते हैं लोगों के बीच में होते हैं और अक्सर देखा गया है कि ये मिर्गी के दौरे के दौरान इनको गिरने से, या जैसे बिस्तर पे मिर्गी का दौरा पड़ा या बैठे बैठे पड़ा, तो ये गिरने के बाद जो चोट की स्थिति होती है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो मिर्गी के दौरे वाले में ये जरूर ख्याल रखें कि अगर ऐसी ऊंची जगह पे कहीं है वो और दौरा हो रहा है तो अब गिरने से चोट न लग जाए तो वो अच्छा है कि फ्लैट सरफेस पे हो रहे हैं। दूसरा कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी काम को करने के लिए तो उसको अवॉइड करिए आप। जैसे बहुत बार लोग टंग को बाइट होने से बचाने के लिए स्टील के चम्मच या किसी चीज़ से करना चाहते हैं, तो आप इसमें ना पड़े, मैं तो यही सलाह दूंगा इसमें ना पड़े आप। ऐसा ना हो कि आप बचाव करने जा रहे हैं या कुछ हेल्प करने जा रहे हैं और ज्यादा उसकी चोटग्रस्त होने की संभावना है। तो ये दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा।
1: बहुत ही यहाँ पर उत्तम चर्चा रही और मुझे लगता है कि समय का तो पता नहीं चला, बहुत सारे सवाल अभी मन में थे और हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे और बहुत सारी बातें, लेकिन समय अब अनुमति नहीं दे रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि श्रोताओं, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, और आप हमें बताते रहिए। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हमने चर्चा की है, आगे भी कार्यक्रम में लगातार चर्चा बनी रहेगी। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद थे वो थे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुराधा को
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
4: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिक विषय की

लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल

0: destiny, don't lie to me. तो दोस्तों, हमारा मन तो अटका है आपके पास, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ बहुत सारे एंटरटेनिंग सॉन्ग्स भी। तो आज प्रोग्राम अल्फा जेन में हम बात कर रहे हैं इस खास जनरेशन की, और हमारे साथ जेन जी से हैं अदिति। अदिति, तो अब आप किसके बारे में बताने वाली हो?
1: अब हम बात करने वाले हैं जेन अल्फा बॉयज की।
0: ओके, तो क्या खास होता है अल्फा बॉयज में?
1: इनका कॉन्फिडेंस और गेमिंग स्किल्स अलग ही लेवल पे होता है। हर दूसरे सेंटेंस में ब्रो कंपल्सरी है। ब्रो ट्रस्ट मी तो इनका यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। और गेमिंग में तो टीम वर्क भी नेक्स्ट लेवल का होता है। फोन बैटरी 5% हो जाए तो इनकी सोल बॉडी से निकल जाती है। लेकिन स्मार्टनेस और क्रिएटिविटी दोनों फुल पावर में होती है।
0: बिल्कुल, ये जनरेशन पावरफुल तो बहुत है, और तभी तो आजकल बहुत सारी ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ें इस नई जनरेशन को ध्यान में रखकर ही काम कर रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

वी आर बैक फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जेन अल्फा गर्ल्स की। इनका फैशन सेंस और कॉन्फिडेंस ऑनेस्टली अनमैच्ड है, और फोटोज के मामले में एंगल परफेक्ट, लाइटनिंग परफेक्ट और कैप्शन एक्स्ट्रा डीप। हम डायरी लिखते थे, ये ऑनलाइन नोट्स अपलोड करती हैं। एक रील अपलोड करने में जितनी मेहनत होती है, उतनी तो हम असाइनमेंट्स में भी नहीं किया करते थे। आउटफिट प्लानिंग भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी होती है। लेकिन एक चीज़ तो इंस्पायरिंग है, ये अपनी इंडिविजुअलिटी प्राउडली शो करती हैं, और शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ये जनरेशन इतनी फियरलेस लगती है।

0: जो अल्फा जनरेशन है ना, ये सबका दिल जीतने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसे फतेह करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। हम बात कर रहे हैं अल्फा जन प्रोग्राम में अल्फा जन की खासियत की, और अदिति ने अभी बताया जैसे कि अल्फा जनरेशन गर्ल्स कैसी होती हैं, अल्फा जनरेशन बॉयज कैसे होते हैं। तो अदिति, आपने इन दोनों की बात तो की, लेकिन इनका जो बॉन्ड है वो पेरेंट्स के साथ कैसा होता है?
1: ये सबसे लेजेंडरी टॉपिक है। पेरेंट्स बोलते हैं हमारे ज़माने में हम मिट्टी में खेलते थे, जेन अल्फा रिप्लाइज, हम माइनक्राफ्ट में सिटीज बिल्ड करते हैं, पेरेंट्स बुक प्रेफर करते थे और जेन अल्फा पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं। दोनों जनरेशन का लाइफस्टाइल अलग है, बट इमोशन और इंटेंशन सेम है। एक जनरेशन एक्सपीरियंस लेके आई और दूसरे जनरेशन न्यू आइडियाज, और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जहाँ पुरानी बातें, परंपराएं और अनुभव हमारे पेरेंट्स के पास है, वहीं जो अल्फा जनरेशन है ना, उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है टेक्नोलॉजी वाइज जो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है।
1: yes.
0: बहुत कुछ। और इसी के साथ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम करने वाले हैं अल्फा जनरेशन के बारे में, आपके अपने शो अल्फा जेन में।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जैन। और आज अल्फा जैन में बात हो रही है इस खास जनरेशन की, और हमारे साथ हैं अदिति देशवाल। तो अदिति, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अल्फा जैन है ना, ये फोन ज्यादा चलाती है। व्हाट यू थिंक?
1: आजकल सब बोलते हैं ये जनरेशन बस फोन चलाती रहती है, बट ऑनेस्टली वही फोन किसी का टैलेंट भी बना देता है। कोई एडिटिंग सीख रहा है, कोई म्यूजिक बना रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती है और अपॉर्चुनिटी भी। डिफरेंस बस यूज करने के तरीके में होता है। जैन अल्फा फास्ट लर्नर्स है और एक्सप्लोर करने से डरते नहीं हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो अदिति, ये तो मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं और अचानक से किसी परिस्थिति के लिए तैयार कभी कभी नहीं भी होते हैं। खासतौर से जब बात करें आउटडोर ट्रिप की, तो अचानक से बैग उठाया और चल दिए इतना हम नहीं कर सकते। लेकिन जो अल्फा जैन है वो इसके लिए बिल्कुल रेडी रहती है, और ये उनके लिए एक नया एडवेंचर है। तो फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी ये बातें जारी रहेंगी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से।

0: क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध

वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलो अब बात करते हैं जेन अल्फा के कुछ अल्ट्रा रिलेटेबल और फनी हैबिट्स की। पासवर्ड याद रखना इनके लिए अननेसेसरी स्ट्रगल है और फेस आईडी ऑलरेडी इनका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। फोन स्टोरेज फुल वार्निंग रोज आती है बट मीम्स और स्क्रीनशॉट कभी डिलीट नहीं होते। एलेक्सा और वॉइस असिस्टेंट को ये लोग घर के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड में चीजें ऐसे ऐड करते हैं जैसे ये इनकी फेवरेट हॉबी हो। टेक्नोलॉजी इनके लिए मैजिक नहीं, नॉर्मल लाइफ बन चुका है और वही चीज इनको यूनिक और एंटरटेनिंग बनाती है।

0: दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अल्फा जैन और हम बात कर रहे हैं अल्फा जनरेशन की खासियत की। तो अदिति हमने इतनी सारी बातें की लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों से यही निकल के आया कि जो अल्फा जनरेशन है ना उसका जो बॉन्ड है सोशल मीडिया के साथ बहुत स्ट्रांग है।
1: स्ट्रांग तो है लेकिन सोशल मीडिया प्रेशर भी क्रिएट करता है। कंपैरिजन और वैलिडेशन का स्ट्रेस कभी कभी बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए ऑनलाइन लाइफ के साथ साथ ऑफलाइन पीस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल अदिति, आपकी इस बात को तो मानना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन लाइफ जितनी मैनेज कर लेते हैं ये अल्फा जनरेशन, लेकिन ऑफलाइन को भी मैनेज करने में ये बखूबी स्मार्ट होते हैं क्योंकि जब इनको लगता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है ये उठाते हैं अपना बैग और बगैर किसी की परवाह किए निकल पड़ते हैं एक ब्रेक लेने के लिए। और फिलहाल मुझे लगता है हमें भी एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेना चाहिए जिससे कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो उसके बाद ब्रेक के बाद सुने बढ़िया सा गाना और हम लेकर आए हैं उसके बाद ढेर सारी बातें।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्फा जनरेशन की। और अदिति, आपने अल्फा जनरेशन के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, तो ऐसी क्या चीज है जो इस जनरेशन को सबसे अलग बनाती है?
1: वो है कॉन्फिडेंस। टीचर पूछे हु नोज द आंसर, हम जेंसी आंखें नीचे कर लेते थे, लेकिन अल्फा जेन बोलते हैं मैम आई विल ट्राई, एंड दैट कॉन्फिडेंस टू बी ऑनेस्ट इज इंस्पायरिंग। ये लोग फेलियर से इतना नहीं डरते, एक्सप्लोर करते हैं, लर्न करते हैं और फिर इम्प्रूव भी करते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हो अदिति, क्योंकि कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी का जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे लगता है वही इस अल्फा जनरेशन की रियल स्ट्रेंथ है। और फिलहाल जो हमारी स्टूडियो की घड़ी है वो दिखा रही है कि 4:55 हो चुके हैं। तो अदिति, हमें कहना होगा टाटा बाय, लेकिन जाने से पहले आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो हमारे लिसनर्स को?
1: हर जनरेशन डिफरेंट होती है और वही उसकी ब्यूटी है। जज करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे समझना। एवरी यंग वॉइस डिजर्व टू बी हर्ड।
0: बिल्कुल सही कह रही बात थी। और मुझे भी लगता है कि जज करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझना, और उसके लिए जरूरी है कि उनकी बातों को समझना, उनसे कुछ सीखना, क्योंकि हर जनरेशन कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। तो फिलहाल अल्फा जेन में हम दोनों, यानी कि अदिति और मैं शालिनी, आपको कहेंगे बाय बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ, क्योंकि आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, आपके अपने स्टेशन ऑफ द नेशन, आकाशवाणी रेनबो पर।

0: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में अब से कुछ देर में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित हैं। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: सरकार देश में पेट्रोल उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।

0: रिप्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये वृद्धि हुई है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जमाना प्यारे अंधे ने भी सपना देखा क्या है जमाना गूंगा भी अब गाने बैठा प्यार का गाना सुझे

0: ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে 11,127টা এছিষ্টেণ্ট লক পাইলট পদৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে। দৰমহাৰ নিৰিখ আৰম্ভণিতে মাহে 19,900 টকা, লগত অন্যান্য বানচ থাকিব। প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। প্ৰাৰ্থী উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, মিল ৰেট, মেইণ্টেনেঞ্চ মেকানিক, মেকানিক ৰেডিঅ' এণ্ড টিভি, ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক, মেকানিক মটৰ ভেহিকেল, ৱায়াৰমেন, ট্ৰেক্টৰ মেকানিক, আৰ্মেচাৰ এণ্ড কইল ৱাইণ্ডাৰ মেকানিক, ডিজেল, হিট ইঞ্জিন, টাৰ্ণাৰ, মেচিনিষ্ট, ৰেফ্ৰিজাৰেচন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং মেকানিক, ইয়াৰে যিকোনো ট্ৰেডত ITR চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব, নাইবা মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স বা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইয়াৰ যিকোনো শাখাত ডিপ্লোমা থকা হ'ব লাগিব। বিতং তথ্য আৰু আবেদনৰ বাবে ৱেবছাইট indianrailways.gov.in। শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ সংস্থান ইমানেই। প্ৰিয় শ্ৰোতাক খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে লভলীন নিগম। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the first civil investiture ceremony held at the Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with the Padma Vibhushan. In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was awarded Padma Bhushan for his services in the field of public affairs. Besides, Shatavdhani Dr. R. Ganesh received the award in the field of art. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received the Padma Bhushan for his contribution to trade and industry, while Dr. Kalipati Ramasamy Palaniswamy received the award in recognition of his outstanding contribution to the field of medicine. Those eminent personalities who have been honoured with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar for her contribution in the field of sports and Taga Ram Bheel for his contribution in the field of arts. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy, among others, were also present on the occasion. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma Awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the inter-ministerial briefing in New Delhi today on the recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. The Joint Secretary said that over 8 lakh PNG connections have been gasified since March, adding that infrastructure has been created for 2,87,000 in connections. Additional Secretary of the Department of Fertilizers, Aparna Sharma, said that the overall stock position of fertilizers in the country remains comfortable. The Supreme Court has issued notice to the Union Government on a PIL seeking stricter prohibition of child labour in entertainment and hospitality-linked establishments. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi and Justice Vipul M. Pancholi took note of the submissions made by Child Rights Collective, Just Rights for Children Alliance. A Delhi court today convicted Congress leader Alka Lamba in a case related to an assault on police personnel during a protest at the Jantar Mantar in the year 2024. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pamar convicted Lamba and fixed 5th of June to hear the arguments on Lamba's sentencing. The prosecution had accused Lamba, the president of the All India Mahila Congress, of obstructing police and blocking a public road while holding a protest at the Jantar Mantar on

0: विचारान् विनिमयं करिष्यन्ति। वर्तमान उपक्रमाणां प्रगतिम् अपि च परस्पर चिन्ता विषयकान् अन्यान् अन्ताराष्ट्रिय विषयान् समीक्षितुं शक्नुवन्ति। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान देशैः युक्तः क्वाड शङ्खः भारत प्रशान्त प्रदेशे शान्त्यै सुरक्षायै स्थिरतायै च प्रमुखः समूहः उद्भूतः अस्ति। भारतं संघटनस्य वर्तमानस्य अध्यक्षस्य रूपेण अस्याः सभायाः आतिथ्यं करोति। भारत ऋतुविभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। विभागस्यानुसारं राष्ट्रिय राजधान्यां दिवसस्य तापमानं 44-46 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुम् अपेक्षा अस्ति। आगामि दिनद्वयोः हरियाणायां चण्डीगढे पंजाबे बिहारे छत्तीसगढे मध्यप्रदेशे तटीय आन्ध्रप्रदेशे पूर्वी राजस्थाने झारखण्डे ओडिशायां तेलंगानायां पश्चिम उत्तरप्रदेशे च उष्णतरङ्गस्य स्थितिः यथावदेव भविष्यति इति वार्ताः।
1: বাতৰি পাছত পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টছ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো ৰিয়া হুছেইন আৰু সংগীত বৃন্দই পৰিৱেশন কৰা জিকিৰ অনুষ্ঠান।

0: অসম বিধানসভাৰ অধিবেশনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক উত্থাপন। বিধানসভাত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ মহিলাৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে সংকল্প প্ৰস্তাৱ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অহা 29 মে'ত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত অভিযুক্ত শ্যামকান্ত মহন্তৰ জামিনৰ ৰায় আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰিয় পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉ आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉ कलिपट्टी रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
2: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
3: Several key agreements were signed.
4: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
3: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश

0: লতা মঙ্গেশকৰ কণ্ঠৰ ভজন্তি শুনিলে আৰু এই ভজন্তিৰে সামৰিব লাগিব আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটি। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9 নিউজ 8 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल का

0: प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथहानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी पलाना स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा

0: के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
2: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
4: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत